0: जगावे।
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: ईश्वराचं अस्तित्व पटतं. ईश्वराचं इच्छा स्वातंत्र्य चमत्कारानं विशेष सिद्ध होतं. ईश्वर निसर्ग नियमात बदल करू शकतो कारण ते त्यानंच घडवलेलं आहे. चमत्कार घडत असतात अशी श्रद्धा मानवजातीच्या आदिम अवस्थेपासून तो आजच्या वैज्ञानिक युगापर्यंत मानव समाजात दृढमूल झालेली आहे. अशा चमत्कारावर अविश्वास प्रकट करणारे लोकही अतिप्राचीन काळापासून आढळतात. अलीकडच्या बुद्धिवादाच्या आणि वैज्ञानिक युगाच्या प्रभावाखाली जे जे मानव समाज आले आहेत आणि येत आहेत त्यांच्यात अशा श्रद्धेला खूप उतरती कळा आलेली आहे. कारण चमत्कारांच्या घटनांची वास्तवता विज्ञान पद्धतीनं सिद्ध होत नाही. चमत्कारानं, मंत्रानं, पूजेनं कित्येकदा रोग बरे होतात ही गोष्ट मात्र मानसिक शक्तीचा प्रभाव होय. अघटित घटनांवरील विश्वास हे या श्रद्धेचं स्वरूप आहे. आपण या चमत्कारावर किती विश्वास ठेवायचा हे
1: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
2: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, बाजार में दो तरह का सामान मिलता है. एक वह जो बहुत भारी, मोटा और खुरदरा होता है, जिसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और उसकी कीमत भी बहुत कम होती है. लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा सामान भी होता है जो बहुत महीन, सूक्ष्म और कलात्मक होता है, जैसे मलमल का कोई बारीक धागा, जिसे बुनने के लिए शिल्पी को अपनी पूरी एकाग्रता, अपनी आँखें और अपना पूरा दिल लगाना पड़ता है. ऐसा बारीक सामान हर किसी के बस की बात नहीं होती और उसे खरीदने की हैसियत भी बाजार में आम खरीदारों की नहीं होती. उसके पारखी कुछ खास लोग ही होते हैं. हमारी चेतना और हमारी साधना की हकीकत भी कुछ ऐसी ही है. कबीर साहब आज हमें समझा रहे हैं कि परमात्मा के दरबार में कोरे और मोटे दिखावे का कोई मोल नहीं है. वहाँ तो केवल भीतरी सूक्ष्मता और एकाग्रता ही स्वीकार की जाती हैं. आइए आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह अद्भुत दार्शनिक सूत्र. नान्हा काती चित दे महंगे मोली बिकाई, नान्हा काती चित दे महंगे मोली बिकाई, गाहक राजा राम है और न नेड़ा आई.

श्रोताओं, कबीर साहब साधना के भीतरी शिल्प को समझाते हुए कहते हैं, नाना काते चित दे। तुम चित दे यानि पूरे होश, सजगता और एकाग्रता के साथ अपने भीतर नाना काती यानी अत्यंत बारीक और सूक्ष्म सूत कातो। यहाँ सूत कातने का अर्थ चरखा चलाना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को एकाग्र करना, वासनाओं के मोटे धागों को छोड़कर ध्यान और सुमिरन के बारीक धागे बुनना है। जब कोई साधक ऐसी सूक्ष्म साधना करता है तो क्या होता है? महंगे मूली बिकाई, उसकी वह शुद्ध चेतना इस संसार के तुच्छ सुखों में नहीं उलझती, बल्कि वह बेहद महंगे मोल यानी परम मूल्यवान हो जाती है। इस अनमोल चेतना का पारखी कौन है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, गाहक राजा राम है। इस सूक्ष्म और पवित्र चेतना रूपी मलमल का एकमात्र गाहक यानी खरीदार जो स्वयं राजा राम

यानी वह परम चैतन्य सत्ता है और न नेडा आए संसार का कोई दूसरा आम खरीदार, कोई सांसारिक वैभव या वासना उस अनमोल चेतना के नेडा यानी नज़दीक भी नहीं आ सकती। उसे कोई और सांसारिक वस्तु खरीद ही नहीं सकती। वह तो सिर्फ परमात्मा के चरणों में समर्पित होने के लिए ही बनी है। यह दोहा सूक्ष्म ध्यान और अनन्य भक्ति का महासूत्र है। मनुष्य का मन आम तौर पर बहुत खुरदरा और स्थूल होता है। वह केवल धन, मकान और शारीरिक भोगों की मोटी बातों को ही समझता है, लेकिन अध्यात्म का मार्ग नान्हा यानी अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे जैसे साधक अपने मन को विकारों से मुक्त करता है, उसकी बुद्धि कुशाग्र और चेतना बारीक हो जाती हैं। इस अवस्था में जीव का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि संसार की कोई भी संपत्ति उसे लुभा नहीं सकती। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि जब तुम अपने भीतर ऐसा अनमोल भीतरी रूपांतरण घटित कर लेते हो तो स्वयं परमात्मा तुम्हारे प्रेम के खरीदार बन जाते हैं। फिर आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूसरा संसार आ ही नहीं सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने विचारों की परतों को देखिए कि वे कितने मोटे और खुरदरे हैं। क्या हम 24 घंटे केवल सांसारिक प्रपंचों, चिंताओं और नफरत का ही मोटा सूत कात रहे हैं? क्या हमारी चेतना का कोई भी हिस्सा उस सूक्ष्म आनंद की तरफ मुड़ पा रहा है? आज कोशिश कीजिए अपने भीतर आज कोशिश कीजिए अपने भीतर उस चित्त दे यानी होश को जगाने की। अपने विचारों को शांत कीजिए, ध्यान को गहरा कीजिए और सुमिरन का वह बारीक धागा बुनिए जो सीधे परमात्मा के दिल को छू सके। अपनी चेतना के मूल्य को इतना ऊंचा उठा दीजिए कि संसार का कोई भी छोटा मोटा लालच आपको डिगा न सके। जब आपके गाहक स्वयं राजा राम बन जाएंगे तो आपकी जिंदगी का हर पल अनमोल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: श्रोताओं नमस्ते। आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेमपंथ अहिंसा का इस प्रोग्राम में आचार्य विनोबा भावे के करीबी श्री वसंतराव नानाजी बुम्बटकर इनके साक्षात्कार की द्वितीय कड़ी हम सुनेंगे।
1: प्रेमपंथ अहिंसा का
2: कि जब भगवान विनोबा की टोली निकलेगी तो उसका व्यवस्थापन मैं करूंगा। सभा में भाषण देने का जिम्मा मेरा था कि विनोबा जी नहीं रहेंगे लेकिन भाषण मेरा रहेगा। बड़ी कड़ी परीक्षा थी वो, तो इस तरह से निकल पड़े वर्धा में कि उनके टोले में चार पांच लोग थे, जय विजय जो थे बाल विजय जय देव जो उनके शरीर का ख्याल रखते थे और बाल विजय उनका लेखने का काम करते थे, दोनों साथ में और को सुनते देश में देश, तीन उनके पार्टी के प्रमुख लोग थे और इस तरह से वो तीन चार लोग की टोली और मैं अपना एक था। और अपना जो हमने विनोबा बुलेटिन वार्ता उसका भी एडिटिंग समय का दोनों संभालने का काम मेरा था। तो पहले निकले यहाँ से पौना से तो सुरगांव नहीं गए, तो सुरगांव पहले ग्रामदान, फिर तो खर्चा जैसे जैसे गए वैसे ग्रामदान होते गए। ग्रामदान का मतलब था कि ग्रामदान कैसा आया, विनोबा जी जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो मंगलोट नाम का गाँव था, वहाँ के लोगों ने ऐसा कि विनोबा जी भूदान्त मांगते लेकिन मैं कहते सभी भूमि गोपाल की है, तक सब सब जमीन भगवान की है किसी नहीं मालक की। तो वहाँ की महिलाओं ने तय किया कैसा कहता है कहना है तो हम सब जमीन भूदान में दे दें, यानी महिलाओं का निर्णय था। वहाँ के दीवान थे संस्थान का थे उनके पत्नी उसने ले लिया और विनोबा जी न मांगे उनको ग्रामदान मिल गया आगा, तब से ग्रामदान की भूमि शुरू हो गया। ग्रामदान का मतलब था कि गांव के जो जमीन के मालिक है वो 75% मालिक 75% जमीन पड़ी दस्तखत हो जाते हैं कि हम ग्राम तब वो ग्रामदान ना जाएगा। ग्रामदान का मत क्या क्या होगा आगे, वहाँ ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा वहाँ गांव के जो भूमिहीन होगी उसने दूसरा हिस्सा भूमिहीनों को देगा, बाकी जिन जिसके पास उसके पास रहेगी और जो ग्राम सभा रहेगी वो गाँव का प्लानिंग करेगी विकास का। तो बब्बा बेबू बका बारा करके कि बालक है देवा है बूढ़ी है महिला है बीमार है, इन लोगों की ख्याल वो ग्राम सभा रखेंगे, ग्राम सभा ग्राम माता बनेगी और गांव के विकास का प्लानिंग करेंगे। इस तरह से भूदान का बंटवारे कर ग्राम का ये व्यवस्था ऐसी होगी। तो ऐसा चलते चलते 27 मई को आर्वी तहसील के गांव में दोपहर में हम बैठे थे विनोबा जी के साथ, दोपहर में गपशप होती थी तो एकदम वहाँ से कमल नैन बजाज और कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल शाह आए कार लेकर कि नरेंद्र जी का देहांत हो गया है, आपके लिए वायुयान आए हैं दिल्ली में, आपको ले जाने के लिए नागपुर चलिए। तो विनोबा जी ने कहा कि गांधी जी गए थे उस समय भी,

0: ऐसे वाइया नया था, लेकिन उस समय मैं नहीं गया, इस समय में मैं नहीं आऊँगा, और वो नहीं गए और उनकी पदयात्रा जारी रही। तब प्रचार होने लगा, देखो कि विनोबा जी कितना घमंडी आदमी है, बोले नेहरू जी की मृत्यु हो गई लेकिन इसको उसका कोई दुख नहीं है, ये खुशहाल मजे से पदयात्रा कर रहा है, ऐसा प्रचार मैं नाम नहीं लूँगा। एक पंचायत समिति के सभापति ने शुरू किया कैसा विनोबा घमंडी आदमी था। तब सभा जुम्मा तो नहीं रहता, हर सभा में जवाब मैंने कहा देखो वहाँ सिंहगढ़ पर लड़ाई हुई है, तानाजी कटकर मर पड़े, तब सुरवाजी रोते नहीं बैठ रहे मैंने कि सुरवाजी के चलो मैंने रस्सी काट दी है लड़ो लड़े और सिंहगढ़ काबिज होगा, अरे वो वहाँ रोते बैठते तो क्या होता, सिंहगढ़ मिलता क्या, अब वहाँ दिल्ली में क्या हुआ, नेहरू मरे पड़े हैं, उनका शव पड़ा है, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तो रास्ता चलाना था, काम तो करना है, तो इसे मठ का गुरु और रोता वाला चेला दोहो का बहुत ऐसी कहावत है, जो गुरु मरता है वो सच्चा गुरु नहीं है, जो रोता है सच्चा शिष्य नहीं है, तो इस ढंग से काम चलेगा। और एक बात है कि विनोबा जी हमेशा कहते थे कि चाइना का जो हमला हुआ उसमें भारत का जो ये हुआ उसका सदना नेहरू जी को पहुँचा, तो ये शस्त्रों की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है, तो विचारों की लड़ाई सभी विचार देने से होता है, तो उनका जो विचार है तो हमारा जो ग्राम दान ग्राम स्वराज का यह सभी विचार है, इसको हमको चलाना है, और नेहरू जी के इसलिए और ज़्यादा इसे ठीक से चलाना है, मैंने कहा ये विनोबा जी के विचार में सभा मैं बोलता था। दूसरे दिन सभा में ये लोग कहने लगे देखो संत आप आते हैं तो हमारे मन में उभर आता है और उसमें हम भावनाओं से होकर दान दे देते हैं, अब इस सब ग्रामदान भी मांगी क्योंकि ग्रामदान होते चले गए, क्योंकि आर्य देश में जैसे प्रवेश हुआ तो वहाँ रसूलाबाद में रचनात्मक संस्था का केंद्र था वो ग्रामदान में आया। दूसरे दिन में नांदूरा नारायण रकाड़ी MLA का गाँव था, मैंने उनसे कहा देखो सुभाष बाबू थे ICS से नेहरू थे, उनको हर कुछ मिलता था लेकिन उन्होंने स्वराज के लिए सब त्याग दिया, अब आप MLA ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका ग्रामदान होना चाहिए, तो नांदोड़ा MLA का ग्रामदान हो गया। फिर आगे गांव में हम पढ़े वो था बड़ा गांव था, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का गांव था वो ग्रामदान होगा, वो रहा क्या, अरे रचना काम का सेंट्रल ग्रामदान हुआ, MLA का ग्रामदान हुआ, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का ग्रामदान विरुड़ वो ग्रामदान हुआ, अरे पूरे आदि तो जिले के ग्रामदान में आ गई थी, तो सब लोग उसमें हड़कंप मच गया कि अब क्या करें, उन्हें प्राइवेट मीटिंग ली कि इसको किस तरह से रोकना चाहिए, ये उनकी मंशा थी। तो ये सिलसिला चलता ही हुआ, तो उन्होंने कहा देखो आप लोग गलत सुझाव दे रहे हैं, मानो कल चुनाव आए लोग कहेंगे कि आज ही वोट डाल के सोचेंगे जरा, विदेश में कहकर आज ही परीक्षा में पेपर क्यों छोड़ेंगे और कभी देंगे तो कभी परीक्षा होगी कभी चुनाव होंगे, ऐसा गलत प्रचार क्यों करते हो, तो भी प्रचार जारी था। फिर चौथे दिन मैं चिढ़ गया कि मैंने कहा कि आपको नेहरू जी के जाने का इतना दुख है तो होटल में आलू बोंडे खाते पान ठेलो पान कर वो शर्म नहीं आती आप लोगों को, रात को अपने औरत के साथ सोते समय उस समय नेहरू जी का दुख आपको नहीं होता, शर्म नहीं आती आप लोगों को, मैंने आम समाज जोर से उनको तगड़ा जवाब दिया। तो दूसरे दिन ने बुलाया क्यों बोल चार दिन से आपका क्या चल रहा ये क्या चल रहा था, तो जो आदमी प्रचार कर रहा था ऐसा उसको भी बुलाया तो और हम लोग को बुलाया और उन्होंने कहा कि उसको कहा कल से तुम मेरे सभा में नहीं देखना चाहिए वो, तो और वो हमारा कार्यक्रम जारी रहा। फिर मुझे यहाँ सामने की व्यवस्था के लिए एक दिन वर्धा आया था, वापस गया यात्रा पर, उसका जिम्मा था हर दिन डे मेरे ऊपर था, सब तरह के आते थे, तो सब लोग घबरा गए थे क्योंकि सामने वाले गांव से चिट्ठी आई थी ना आप हमारे गांव में मत आइए हम आपकी व्यवस्था नहीं कर सकेंगे, अब क्या करें, मैं वहाँ गया मैंने पढ़ा गांव किनारा, वो किनारा वो गांव था जिस गांव में मैं एक महीना मुकाम किया था और पूरे दर्शन में घूमता था, और 3000 एकड़ जब मिली थी उस गांव का नाम ना शिविर को नाड़ा ना पड़ा, इतने बड़े शिविर लगे उस गांव में लगातार महीना भर, समझा कि यह हो नहीं सकता। चीज गांव ने बंदर का इतना सम्मान किया और जब राम वहाँ आ रहा उसको लोग कैसे रोक सकते। तो मैं वहाँ चल गया कि क्या बात है। वामन राव पाटिल उनके घर जहाँ मैं ठहरता था, तो मैं गए तो पूरा गाँव तो महीना में वहाँ घूमता था, परिचय का बूढ़े लोग आए जवान हमारे साथ ही आ गए कि आ गए आ गए। तो मैंने कहा आप लोगों ने क्यों मना क्यों कर दो। तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दिखाई है, उस चिट्ठी में लिखा था कि मुझे इतने प्रकार के अत्तर चाहिए, इतने प्रकार के साबुन चाहिए, इतने प्रकार के पेय चाहिए, इतने तो इतने प्रकार के फल चाहिए, जितने चैन विलास की चीज़ें थी वो सब चिट्ठी में लिखी हुई थी। अब एक जिमा था, जिला परिषद ने जिमा लिया था व्यवस्था का, वो जिला परिषद किसी आदमी ने हिस्सा से लिख दिया था, उन्होंने मेरे पास चिट्ठी, मैंने वो चिट्ठी लिखी, मैंने फाड़ के फेंक दिए थे हवा में। मैंने कहा मैं एक महीना आपके गाँव में रहा, घूमता रहा आपके साथ, मैंने कभी भी कोई एक बात आपसे मांग की, ये हमारी मांग नहीं है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कल युनवा जिस गाँव में आएगा आपके मनाई है तो पेड़ है, मैं जानता हूँ, मैं वो बड़े पेड़ के नीचे हम उतरेंगे और सार्वजनिक कुआ है उसको पानी पिएंगे। क्या उस पेड़ के नीचे उतरने के लिए आपके मनाई है, क्या उस पानी का पीने की मुझे आपके मनाई है। लोग उठोने लगे, आप मने करेंगे, हम तो आएंगे, हम तो आएंगे, तो क्या हमको रोकेंगे पानी पीने से, पेड़ के नीचे रहने से। फिर मैं वहाँ से सभा से उठकर घर के कहाँ चल कहाँ चल, मैं काकू को नमस्कार करने के लिए जा रहा। मैंने कहा काकू कौन थी जिसने महीना भर जब कभी मैं घूम कर आता रात को 10-12 बजे मैंने ताज़ा भोजन खिलाने मिलते, मैं उसका चरण वंदन करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसका चरण वंदन किया, कैसा है रोग ऐसा ऐसा, मैं कोई गाँव वाले ऐसा कह तो चिंता कर, मैं अकेले ऐसा करूँगा। मैं अभी मैं वापस आया, मैं उन लोगों से कोई बातचीत नहीं, मेरे से एक बूढ़े आदमी थे, मैं वहाँ से वापस लौट गया। कोई बात नहीं क्यों थी व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे विश्वास थी व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था, मुझे विश्वास था, मैं वहाँ चला आया अच्छी व्यवस्था में। इस तरह से पदयात्रा में बातें होती रहीं। अब यहाँ की बात वर्धन है, विनोबा है, अरे मैं नाम नहीं लूँगी कि उन्हें एक पुराने नेता को पत्र लिखा कि आपकी में दोस्ती है, वो पुराने जमाने गांधी के ज़माने के आए थे, तो मैं आपके गांव में आऊँगा, मैं भूदान ग्राम ना कुछ नहीं मांगूँगा। तो उस आदमी ने जवाब कह दिया, जो आदमी ऐसा था कि जिसके बर्थडे पर गांव को भोजन मिलता था, ऐसी उसकी आर्थिक अवस्था थी, संतरी के बाग थी उसकी, उसने कहा बिना आप मत आइए, आप बूढ़े हैं तो अपने साथ दो लोगों के साथ खिलाइए, बाकी लोगों को मैं खिला नहीं सकूँगा। संसद से आगे क्या करें, मैं तो टोली का इंतजाम करने वाला था। तो बंग साहब को मैंने कहा कि देखो मैं जाता हूँ और ऐलान करता हूँ कि इला आएगा और उस दिन नगद भोजन होगा, यानी वो तो इलाजू को खिलाने के तैयार है। मैंने कहा कि उसके साथ मैं उसके पूरे गाँव को नगर भोजन दूंगा। तो बंग साहब ने कहा ऐसा मत करो। मैंने कहा कि ना ऐसा करेंगे, उसको भी जरा नसीहत देनी चाहिए कि इतनी उद्दंडता एक आदमी का साथ करे, नहीं ऐसा मत। मैंने कहा कुछ गांव में अब मैं नहीं आऊँगा, विनोद जी के पद है था जो होगा, तो मुझे तो मालूम होगा व्यवस्था तो अच्छी होगी। वो विनोद जी कहे तो आदमी मिलने तक नहीं आया, वो ब्राह्मणेतर पार्टी के नेता थे, गांधी जी का आश्रम भी यहाँ न हो यह उनकी तैयारी थी उन लोगों की, लेकिन जमनाल बजाज के कारण वो कुछ तो कर नहीं सके। ऐसा ही पहले ग्रुप था ब्राह्मणेतर लोगों का, ब्राह्मणों का देश करने वालों का। एक ही समय एक आदमी के पास मैं गया था, जयप्रकाश जी का यहाँ दौरा था, तो जाजू जी ने मैं किया उस वमनरा वसु के यहाँ जो जिला परिषद या जिला भूविकास बैंक के अध्यक्ष थे और यहाँ के नेता के नेताओं के नेता थे, तो मैं उनसे बात करने के लिए गया था कि कल जयप्रकाश जी आएंगे आपसे बात करने के लिए। तो वो भला आदमी गांधी जी के जितने भी जाजी ने पूरे भारत में खादी बैनर खुलवाए हजारों, उनको गालियाँ देता था, गालियाँ, और कुमारप्पा जी उनको गालियाँ देता था, गालियाँ ही, और मनोहर जी दीवान क्या लेन देन है उनसे, उनको भी उन्हें पुलिस ही गालियाँ देता था। मैं बोलने की कोशिश करता बोल ही नहीं देता था। हमने कहा याद नहीं, ऐसा है कि अच्छा मैंने कहा गलत है झूठ है, मैंने उसके मुझे शब्द निकले पहले ही मैंने भी अपना तोपखाना शुरू किया, गलत है झूठ है गलत है झूठ है, मैंने अपना मारा शुरू किया। मैंने कहा देखो अब कल जयप्रकाश जी आए थे क्या करें, बोले सुई के नोक पर मिलने इतने भी जमीन मैं नहीं दूंगा बोले। मैंने कहा आपने महाभारत पढ़ा होगा, ऐसा किसने कहा था और उसका नतीजा क्या हुआ, निकाल दिया उसके घर के बाहर। मैंने कहा उसकी क्वेश्चन मत कि मैं खुद जाता हूँ, लेकिन मेरा शब्द ख्याल में रखो कि जिस दुर्योधन का मन सुख के नहीं कर जमीन दे उसका असर क्या हुआ, आप सोचे जा रहे इस पर। अरे ईश्वर भी वरदान विनोद जी के साथ। एक बार 1757 में प्लासी के लड़ाई में भारत के हार हुए अंग्रेजों के साथ, 1857 भी हम सफल नहीं हुए, 1957 भूमि क्रांति करेंगे, फिर मुझे नारा लिया अब क्या करें। वड़ेगा भंडारा जिले में वहाँ हमने सम्मेलन लिया पूरा कि 57 की क्रांति को सफल मनाने क्या करना है, तो वहाँ प्रस्ताव आया कि आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों के जेल में साल साल दो दो साल तक कार्य करता रहे, अब हमारे कि भूमि क्रांति का साल है युद्ध क्रांति का साल है, तो हम भगवान का जेल समझकर एक साल भर घर में नहीं जाएंगे, कोई घर में नहीं जाएगा, पूरे साल भर में विदर्भ में भूमि क्रांति को बल देने के लिए घूमेंगे। निर्णय हुआ और जिले जिले में प्रचार हुआ, हमारे संयोजक था तो भंडारा जिले में 50 लोग निकले जो घर में नहीं जाएंगे, नागपुर में वर्धा जिले में 50 लोग निकले, एक वानखेड़े का किस्सा है, सभा हो रही थी लोग निकल रहे थे, एक वहाँ के कार्यकर्ता ने साल भर से निकलने का वादा किया और वो टोली में आने लगा तो पीछे से उसकी पत्नी आ गई उसके लपेट गई उसके कमर में, वो आगे बढ़ा वो पीछे खींच रहे कहाँ जा रहे बोले नेरल में बिल्कुल का क्या इंतजाम है, तो इसे वो तमाशा गाँव वालों ने देखा कि 50 लोग वो अपने विचार आने की कोशिश कर पत्नी पीछे खींच भेजे, तो मैंने उसको समझा देखो या आना हो तो अच्छा ना आना तो इतना तो कर सकते हो कि तुम जहाँ जाओगे वहाँ केवल भूदान की बात करना, शादी में जाओ कहीं नहीं जाओ, मत हो गया तुम्हारा एक साल का। तो इस तरह से वर्धा जिले में 57 लोग निकले, यवतमाल जिले में निकले, अकोला जिले में निकले, नहीं करीब करीब 250 लोग निकले पूरे विदर्भ में। तो उस समय में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, मैंने पूरे घूमते घूमते सभा करना और मेरा तो निर्णय था पहले से कि सभा में जब तक भूदान नहीं मिलता तब तक मेरी सभा खत्म नहीं होती थी, कंधे पे कंबल रहता था एक बार झोड़ा रहता था, अरे बंग साहब अरे तू कैसा है बोलो, मैंने कहा मैं या मरना बेहतर तो समझता, बिछाने पर मुझे आराम नहीं मिलता था, तब तो मैंने अपने कार्यकर्ता देखो इसी को कंबल अपने ले लो सैला ले लो, मैं क्रॉस करने लगा नदी तो मेरे जीते उन्होंने उठाए, इसलिए उन्होंने मेरी पूरी यानी हिफाजत की कि जरा भी तकलीफ न हो। तो इस तरह से भारत में जो कहीं न हुआ वो सब इस विदर्भ में हुआ, क्यों इन सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल था। एक बार विनोद ने ऐलान किया कि देखो जैसे भारत में एक दिन में होली होती है एक दिन में दिवाली होती है, ऐसे भूदान में मिली जमीन एक दिन में क्यों न बांटी जाए, हमने वो नारा उठा लिया, उन्होंने भूदान समिति मीटिंग बुलवाई सबकी, उसने संत टुकड़े जी महाराज आए थे प्रमुख कार्यकर्ता आए थे, मैंने इच्छा रखे कि हमको ये संकल्प करना है कि एक दिन में जितने भूदान जमीन नहीं दी विदर्भ में एक दिन में बांटनी चाहिए सबको, आश्चर्य के कैसा समझने का ये संभव मैं हो सकता है, मैंने कहा कि आप जुम्मा लेते, मैंने हाँ मैं भी जुम्मा लेता हूँ आप पूरी शक्ति मुझे दीजिए आपकी। तो मैंने ये लिस्ट तैयार की किस गांव में कितनी जमीन बांटनी है, तो कम से कम एक आदमी को 5 एकड़ चाहिए, तो 5 एकड़ के ऊपर जितने जमीन बटनी जिस गांव में है उन सब गांव में हम बंटवारा करेंगे, और फिर कार्यकर्ताओं के जिम्मे काम बांट दिया कि कौन से गाँव में कितनी जमीन बटनी है, और बंटवारे का ट्रेनिंग देने के लिए 40 जगह मैंने शिविर लिए, एक्चुअल जमीन का बंटवारा कैसा करते हैं, जमीन का बंटवारा करने का तरीका यह है गांव की आम सभा बुलाना और आम सभा में कौन भूमि है उनके नाम मंगवाना, फिर कितनी जमीन बंटने की है वो जमीन का 3 लोगों को जमीन बांटनी है, 5 नाम आ अब क्या करें, कार्यकर जमीन नहीं बनेगा, वो पांच लोग एक जगह बैठेंगे और उसने कोई अपना विड्रॉ करेगा, मेरे पास जमीन तो मैं विड्रॉ करता हूँ, लेंगे चार, अब क्या करें, अब गोटियाँ डालेंगे चार, जो तीन दिन के नाम देंगे उसको जमीन मिलेंगे, अब कोई पक्ष का इतना ही पैसा नहीं, पूरे विदर्भ ने इसे ट्रेनिंग शिविर लिया, उनको उन उन गाँव का जिम्मा दे दिया। साल भर में एक दिन ने 2 अक्टूबर का दिन तय था गांधी जयंती का, तो 1100 गांव में जमीन बटी एक दिन में, हमने निश्चित तय की जन आंदोलन कार्यकर्ता जमीन नहीं बांटेगा, अब जनता जमीन बांटेगी, अब हमारा पड़ेगा शेष हुआ। जैसे जैसे विनोद ने जो जो भी जिम्मा दिया वो करके बताया।
1: लास्ट में जैसे कि विनोबा की जैसे समाधि की ओर जब विनोबा चले, तो उस समय क्या परिस्थिति थी?
0: वो कई सालों से हमारे मन की तैयारी कर रहे थे और नागेंद्र ने समाधि ली, जब मैं मरूंगा तो क्या तुम हंसते हंसते मुझे विदाई करोगे कि मैं आप मेरी विदाई करोगे, वो बार बार कर रहे 2-3 साल पहले, इसका अर्थ उनके मन में चल रहा था कि हम, और बाद में वो कहते हैं मेरा कर्तव्य संपूर्ण, बाजी कर्तव्य संपूर्ण, कहने का मुझे करना था किया और समाप्तम कहने का मतलब था उनका, और उस मानसिक अवस्था में थे।
1: देह त्याग दिया विनोबा ने, तो उस समय आपको कैसा लगा या क्या फीलिंग थी और आश्रम के जो निवासी है उनकी, कि अब तो विनोबा जी चले गए आश्रम का कैसे होगा, या ऐसे कुछ प्रश्न उभर कर आए?
0: ऐसा है कि विनोद जी ने जब ब्रह्म विद्या मंदिर शुरू किया तो उसके बाद 12 साल के बाद आए थे, उनके पीछे 12 साल तक वहाँ आश्रम चलता रहा।
1: जैसे मैंने पहले भी कहा था कि विनोबा की समाधि के समय आश्रम की स्थिति क्या थी,
0: तो विनोद जी के आखिरी दिन थे जब मैं लगा था, जो बीमार थे और उनका आंसर शुरू हो गया था, बंग साहब ने मुझे संदेश भेजा खेती पर, अरे आओ ना विनोद जी की आखिरी घटना यह अवस्था है, तो मैंने अपने खेत को छोड़कर, मेरा संकल्प तीर्थ हो गई थी, 3 साल भी होते आए थे, मैं वहाँ गया और देखा विनोद जी का आखिरी सांस चल रहा, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन विनोद जी ने तो मना ही कि रोता चेला, तो मुझे तो बाद में मैंने अपने एक इसमें लिखा है पत्र लिखा है बाद में कि आपके साथ आने से मेरे जो मूल की प्रवृत्तियाँ थी उसको एक निष्ठा वैचारिक अधिष्ठान प्राप्त हुआ, जब मुझे आपकी याद आती है तो मैं बहुत रोता हूँ, लेकिन ये बड़े आंसू है ये कमजोर के नहीं है, ये कृतज्ञ के है, आपके अब तक मैंने जो कृतज्ञ है और मेरी जो कमजोरी मेरे मुझे में कि मैं आप काम को नहीं पूरा इसके लौटता हूँ, ऐसा मैं उनको पत्र रखा, वही पत्र हमने गांधी जी को भी लिखा, मैं क्या रखा कि आपके काम आपका काम करने के लिए मैं अपने को कमजोर पाता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं लौखा हो गया इसलिए मेरा घूमना बंद हुआ, नहीं तो आप देखते कि आप मुझे मैं गढ़चिरौली में होता, हड़गांव में घूमता, इन नक्सलियों के गढ़ों में घूमता, मैत्री यात्रा निकालने का मैं था, लेकिन मैं चल नहीं सकता बोल खबर में, भोजन के भी मुझे लेकिन क्या करे मैं खामोश हूँ, लिखता भी नहीं, वो किताबें लिखी है क्योंकि मेरा निर्णय मेरा यह था संकल्प था वह जो मैं वही लिखूंगा जो मैंने किया है, मेरे लिखने में एक शक्ति थी उसके एक फॉलोइंग थी उसके, आवाज़ में कुछ निकल नहीं पाता इसलिए लिखता भी नहीं, किताब लिखी है किसान गीता, पहले मैंने सोचा था कि मैं किसान 21वीं सदी का किसान वेद लिखूं, मेरी तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, विदर्भ मेरा कार्यक्षेत्र है और यह आत्महत्या हो रही है, और किसान को वेद सिखाने की जरूरत है, किसान को गीता सिखाने की जरूरत है, जैसे कृष्ण ने 5 पांडवों को लड़ाई के लिए खड़ा किया, किसानों को किसान के बेटों को लड़ाई के लिए खड़ा करना है, उसके लिए किसान गीता किताब मैंने लिखी थी, लिखी और प्रकाश होनी है, उसका रिश्ता मैं नहीं करूँगा। पवनार में कभी जाता हूँ, कभी सेवाग्राम जाता हूँ तो मन रोता है, वहाँ का वैभव मैंने देखा है पहले का, और लोग आज की स्थिति में देखता हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं तो वहाँ तो यकीनन कहता हूँ, मैंने एक सभा में जब ठीक था कहा था मैंने एक बैठक में, यदि मैं चंगा होता श्री शंकर का तांडव नृत्य क्या है, विदर्भ में देखा होता। एक दिन चौपाइया वाहन इस सड़क से गुजर नहीं सकता था, एक किसान आत्महत्या कर रहा है, पूरा किसान रास्ते पर खड़ा होता, लेकिन अब क्या करें, मेरा वो संगठन है, मेरे भंडारा के साथी की मृत्यु हो गई है, नागपुर के साथी की मृत्यु हो गई है, यवतमाल के साथी की मृत्यु हो गई है, अकोला के साथी की मृत्यु हो गई, आखिर करेंगे किसके बताओ। एक दिन बंग साहब मुझे यहाँ मिलने के लिए आए, पुनः पेटूया आयुष्याचा मशाली, अरे फिर से अपन खड़ा करेंगे। वो हमेशा उनका मारा रिश्ता ऐसा था कि जहाँ मैं हूँ वहाँ बंग साहब, जहाँ बंग साहब वहाँ मैं हूँ। हम दोनों को फुलदान के क्षेत्र के राम लक्ष्मण कहा करते थे। मैंने कहा कि देखो बंग साहब, अब आपकी स्थिति ऐसी है कि आपका आवाज़ 10 लोगों तक नहीं पहुँच सकता, आप चल नहीं सकते थे। और वर्धा जिले के हमारे जो साथी थे, आर्मी के बाबा रोजाड़े हमारे सरदार, वो नहीं रहे। हिंगन घाट के जो देशपांडे थे वे नहीं रहे। वर्धा के जानराव राव थे वे नहीं रहे थे। सरजाड़ा बड़े थे भी नहीं। हमारे पाँचों भाई सेनापति थे, कोई जिंदा नहीं है। वही स्थिति और आपकी और मेरी जो हालत है, वो अपने जमाने के लोगों की। अब किसके बल पर हम लड़ेंगे, लड़ना तो चाहते लेकिन किसके बल पर लड़ेंगे। जो गुजर गए मैं तो कल्पना नहीं कर सकते, इस आदमी में ताकत थी कि वो पूरे विदर्भ को खड़ा कर रहा।
1: जी, हमें भी आपके इस साक्षात्कार से बहुत सारी प्रेरणा मिली है और हमारे जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, उनको भी यह साक्षात्कार निश्चित ही मार्गदर्शक रहेगा कि उस समय की परिस्थितियाँ और उनसे आपने जो जो दो दो हाथ किए, उस समय की सारी बातें, सारा घटनाक्रम इस साक्षात्कार के माध्यम से, रेडियो एमगिरी के माध्यम से हमारे वर्धा, हमारे पूरे भारत के सामुदायिक रेडियो से लोगों तक पहुँचेगा, यही एक संदेश है। दूसरा, आपकी दीर्घायुष्य के लिए हम हमारी रेडियो एमगिरी और हमारे महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान की ओर से शुभकामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको दीर्घायुष्य मिले और इसी तरह आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे। आपने साक्षात्कार दिया, इसलिए रेडियो एमगिरी की ओर से मैं आपका धन्यभागी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस धारावाहिक में आचार्य विनोबा भावे के करीबी श्री वसंत नानाजी बोंबटकर, इनके साक्षात्कार की द्वितीय कड़ी सुनी। यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की। वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

श्रोताओं, कबीर साहब साधना के भीतरी शिल्प को समझाते हुए कहते हैं, नाना काते चित दे। तुम चित दे यानि पूरे होश, सजगता और एकाग्रता के साथ अपने भीतर नाना काती यानी अत्यंत बारीक और सूक्ष्म सूत कातो। यहाँ सूत काटने का अर्थ चरखा चलाना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को एकाग्र करना, वासनाओं के मोटे धागों को छोड़कर ध्यान और सुमिरन के बारीक धागे बुनना है। जब कोई साधक ऐसी सूक्ष्म साधना करता है तो क्या होता है? महंगे मूली बिकाई, उसकी वह शुद्ध चेतना इस संसार के तुच्छ सुखों में नहीं उलझती, बल्कि वह

नेडा आए। संसार का कोई दूसरा आम खरीदार, कोई सांसारिक वैभव या वासना उस अनमोल चेतना के नेडा यानी नजदीक भी नहीं आ सकती। उसे कोई और सांसारिक वस्तु खरीद ही नहीं सकती। वह तो सिर्फ परमात्मा के चरणों में समर्पित होने के लिए ही बनी है। यह दोहा सूक्ष्म ध्यान और अनन्य भक्ति का महासूत्र है। मनुष्य का मन आम तौर पर बहुत खुरदरा और स्थूल होता है। वह केवल धन, मकान और शारीरिक भोगों की मोटी बातों को ही समझता है, लेकिन अध्यात्म का मार्ग नान्हा यानी अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे जैसे साधक अपने मन को विकारों से मुक्त करता है, उसकी बुद्धि कुशाग्र और चेतना बारीक हो जाती हैं। इस अवस्था में जीव का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि संसार की कोई भी संपत्ति उसे लुभा नहीं सकती। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि जब तुम अपने भीतर ऐसा अनमोल भीतरी रूपांतरण घटित कर लेते हो, तो स्वयं परमात्मा तुम्हारे प्रेम के खरीदार बन जाते हैं। फिर आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूसरा संसार आ ही नहीं सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने विचारों की परतों को देखिए कि वे कितने मोटे और खुरदरे हैं। क्या हम 24 घंटे केवल सांसारिक प्रपंचों, चिंताओं और नफरत का ही मोटा सूत कात रहे हैं? क्या हमारी चेतना का कोई भी हिस्सा उस सूक्ष्म आनंद की तरफ मुड़ पा रहा है? आज कोशिश कीजिए अपने भीतर उस चित्त दे यानी होश को जगाने की। अपने विचारों को शांत कीजिए, ध्यान को गहरा कीजिए और सुमिरन का वह बारीक धागा बुनिए जो सीधे परमात्मा के दिल को छू सके। अपनी चेतना के मूल्य को इतना ऊंचा उठा दीजिए कि संसार का कोई भी छोटा मोटा लालच आपको डिगा न सके। जब आपके गाहक स्वयं राजा राम बन जाएंगे, तो आपकी जिंदगी का हर पल अनमोल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: श्रोताओं नमस्ते। आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेमपंथ अहिंसा का इस प्रोग्राम में आचार्य विनोबा भावे के करीबी श्री वसंतराव नानाजी बुम्बटकर इनके साक्षात्कार की द्वितीय कड़ी हम सुनेंगे।
1: प्रेमपंथ अहिंसा का
2: कि जब भगवान विनोद की चोली निकलेगी तो उसका व्यवस्थापन मैं करूंगा। सभा में भाषण देने का जिम्मा मेरा था कि विनोबा जी नहीं रहेंगे लेकिन भाषण मेरा रहेगा। बड़ी कड़ी परीक्षा थी वो, तो इस तरह से निकल पड़े वर्धा में कि उनके टोले में चार पांच लोग थे, जय विजय ज्योति बाल विजय जय देव जो उनके शरीर का ख्याल रखते थे और बाल विजय उनका लेखने का काम करते थे, दोनों साथ में और को सुनते देशपांडे, तीन उनके पार्टी के प्रमुख लोग थे और इस तरह से वो तीन चार लोग की टोली और मैं अपना एक था। और अपना जो हमने विनोबा बुलेटिन वार्ता उसका भी एडिटिंग समय का दोनों संभालने का काम मेरा था। तो पहले निकले यहाँ से पवना से तो सुरगांव नहीं गए, तो सुरगांव पहले ग्रामदान, फिर तो खर्चा जैसे जैसे गए वैसे ग्रामदान होते गए। ग्रामदान का मतलब था कि ग्रामदान कैसा आया, विनोबा जी जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो मंगरोट नाम का एक गाँव था, वहाँ के लोगों ने ऐसा कि विनोबा जी भूदान्त मांग चले गए। मैं कहते सभी भूमि गोपाल की है, तक सब सब जमीन भगवान की है, किसी नहीं मालक की। तो वहाँ की महिलाओं ने तय किया कैसा कहता है कहना है तो हम सब जमीन भूदान में दे दें, यानी महिलाओं का निर्णय था। वहाँ के दीवान थे संस्थान का थे, उनके पत्नी उसने ले लिया और विनोबा जी न मांगे उनको ग्रामदान मिल गया। आगा तब से ग्रामदान की भूमि शुरू हुआ। ग्रामदान का मतलब था कि गांव के जो जमीन के मालिक है वो 75% मालिक 75% जमीन पड़ी दस्तखत हो जाते हैं कि हम ग्राम तब वो ग्रामदान नाम जाएगा। ग्रामदान का मत क्या क्या होगा आगे, वहाँ ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा वहाँ गांव के जो भूमिहीन होगी उसमें दूसरा हिस्सा भूमिहीनों को देगा, बाकी जिन जिसके पास उसके पास रहेगी। और जो ग्राम सभा रहेगी वो गाँव का प्लानिंग करेगी विकास का, तो बबा बेबू बका बारा खेल के बालक है, देवा है, बूढ़ी है, महिला है, बीमार है, इन लोगों की ख्याल वो ग्राम सभा रखेंगे। ग्राम सभा ग्राम माता बनेगी और गांव के विकास का प्लानिंग करेंगे। इस तरह से भूदान का बटवार का ग्राम का ये व्यवस्था ऐसी होगी। तो ऐसा चलते चलते 27 मई को आर्वी तहसील के गांव में दोपहर में हम बैठे थे विनोबा जी के साथ, दोपहर में गपशप होती थी। तो एकदम वहाँ से कमल नैन बजाज और कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल शाह

उस समय मैं नहीं गया, इस समय में मैं नहीं आऊँगा, और वो नहीं गए और उनकी पदयात्रा जारी रही। तब प्रचार होने लगा, देखो कि विनोबा जी कितना घमंड आदमी है, बोले नेहरू जी की मृत्यु हो गई लेकिन इसको उसका कोई दुख नहीं है, ये कुशाल बाबा मजे से पदयात्रा कर रहा है, ऐसा प्रचार मैं नाम नहीं लूँगा। एक पंचायत समिति के सभापति ने शुरू किया कैसा विनोबा घमंड आदमी था। तब सभा जिम्मा तो मेरे था, हर सभा में जवाब मैंने कहा देखो वहाँ सिंहगढ़ पर लड़ाई हुई है, ताना जी कटकर मर पड़े, तब शिवाजी रोते नहीं बैठे मैंने कि शिवाजी के चलो मैंने रस्सी काट दी है लड़ो लड़े और सिंहगढ़ का भी होगा, अरे वो वहाँ रोते बैठते तो क्या होता, सिंहगढ़ मिलता क्या, अब वहाँ दिल्ली में क्या हुआ, नेहरू मरे पड़े हैं, उनका शव पड़ा है, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तो रास्ता चलाना था, काम तो करना है, तो इसे मठ का गुरु और रोता वाला चेला दोहो का बहुत ऐसी कहावत है, जो गुरु मरता है वो सच्चा गुरु नहीं है, जो रोता है सच्चा शिष्य नहीं है, तो इस ढंग से काम चलेगा। और एक बात है कि विनोबा जी हमेशा कहते थे कि चाइना का जो हमला हुआ उसमें भारत का जो ये हुआ उसका सदना नेहरू जी को पहुँचा, तो ये शस्त्रों की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है, तो विचारों की लड़ाई सब विचार देने से होता है, तो उनका जो विचार है तो हमारा जो ग्रामदान ग्राम स्वराज का यह सब विचार है, इसको हमको चलाना है, और नेहरू जी के इसलिए और ज़्यादा इसे तीसरी से चलाना है। मैंने कहा ये भी नोजे के विचार में सुबह मैं बोलता था। दूसरी दिन सभा में ये लोग कहने लगे देखो संत आप आते हैं तो हमारे मन में उभार आता है और उसमें हम भावना होकर दान दे देते हैं, अब इस सब ग्रामदान मांगी, क्योंकि ग्रामदान होते चले गए, क्योंकि आर्य देश में जैसे प्रवेश हुआ तो वहाँ रसूलाबाद में रचनात्मक संस्था का केंद्र था, वो ग्रामदान में आया। दूसरे दिन में नांदूरा नारायण रकाड़ी MLA का गांव था, मैंने उनसे कहा देखो सुभाष बाबू थे, ICS थे, नेहरू थे, उनको हर कुछ मिलता था लेकिन उन्होंने स्वराज के लिए सब त्याग दिया, अब आप MLA ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका ग्रामदान होना चाहिए, तो नांदोड़ा MLA का ग्रामदान हो गया। फिर आगे गांव में हम पढ़े, वो था बड़ा गांव था, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का गांव था, वो ग्रामदान होगा, अब रहा क्या, अरे रचना काम का सेंट्रल ग्रामदान हुआ, MLA का ग्रामदान हुआ, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का ग्रामदान विरूढ़ वो ग्रामदान हुआ, अरे पूरे आदित्य तो जिले से ग्रामदान में आ गई थी, तो सब लोग इसमें हड़कंप मच गया कि अब क्या करें, उन्हें प्राइवेट मीटिंग ली कि इसको किस तरह से रोकना चाहिए, ये उनके उनकी मंशा थी। तो ये सिलसिला चलता ही हुआ, तो उन्होंने कहा देखो आप लोग गलत सुझाव दे रहे हैं, मानो कल चुनाव आए लोग कहेंगे कि आज ही वोट डाल क्यों जाए, सोचेंगे जरा विदेश में आज ही परीक्षा में पेपर क्यों छोड़ेंगे, और कभी देंगे तो कभी परीक्षा होगी कभी चुनाव होंगे, ऐसा गलत प्रचार क्यों करते हो, तो भी प्रचार जारी था। फिर चौथे दिन में चिढ़ गया कि मैंने कहा कि आपको नेहरू जी के जाने का इतना दुख है तो होटल में आलू बोलने खाते पान ठेलो पान कर लोग शर्म नहीं आती आप लोगों को, रात को अपने औरत के साथ सोते समय उस समय नेहरू जी का दुख आपको नहीं होता, शर्म नहीं आती आप लोगों को, मैंने आम समाज जोर से उनको तगड़ा जवाब दिया। तो दूसरे दिन उन्होंने बुलाया कि बोल चार दिन से आपका क्या चल रहा, ये क्या चल रहा था, तो जो आदमी प्रचार कर रहा था ऐसा उसको भी बोला और हम लोग को बोला, और उन्होंने कहा कि उसको कहा कल से तुम मेरे शो में नहीं देखना चाहिए, तो और वो हमारा कार्यक्रम जारी रहा। फिर मुझे यहाँ सामने की व्यवस्था के लिए एक दिन वर्धा आया था, वापस गया यात्रा पर, उसका जिम्मा था हर दिन डे मेरे ऊपर था, सब तरह के आते थे, तो सब लोग घबरा गए थे क्योंकि सामने वाले गांव से चिट्ठी आई थी विनोद जी आप हमारे गांव में मत आइए हम आपकी व्यवस्था नहीं कर सकेंगे, अब क्या करें, मैं वहाँ गया, मैंने पढ़ा गांव किनारा, वो किनारा वो गांव था जिस गांव में मैं एक महीना मुकाम किया था और पूरे दर्शन में घूमता था, और 3,000 एकड़ जमीन ली थी, उस गांव का नाम ना शिविर को नाड़ा नाम लगा, इतने बड़ी शिविर लगे उस गांव में लगातार महीना भर,

तुमने कहा ये हो नहीं सकता, चीज़गांव ने बंदर का इतना सम्मान किया और जब राम वहाँ आ रहा उसको लोग कैसे रोक सकते। तो मैं वहाँ चला गया कि क्या बात है। वामन राव पाटिल उनके घर जहाँ मैं ठहरता था, तो मैं गए तो पूरा गाँव तो महीना में वहाँ घूमता था, परिचय का बूढ़े लोग आए जवान नाम साथी आ गए कि आ गए आ गए। तो मैंने कहा आप लोगों ने क्यों मना क्यों करते हो, तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दिखाई है। उस चिट्ठी में लिखा था कि मुझे इतने प्रकार के अत्तर चाहिए, इतने प्रकार के साबुन चाहिए, इतने प्रकार के पेय चाहिए, इतने तो इतने प्रकार के फल चाहिए, जितने चैन विलास की चीज़ें थी वो सब चिट्ठी में लिखी हुई थी। अब एक जिमा था, जिला परिषद ने जिमा लिया था व्यवस्था का, वो जिला परिषद किसी आदमी ने हिस्सा से लिख दिया था, उन्होंने मेरे पास चिट्ठी, मैंने वो चिट्ठी लिखी, मैंने फाड़ के फेंक दिए थे हवा में। मैंने कहा मैं एक महीना आपके गाँव में रहा, घूमता रहा आपके साथ, मैंने कभी भी कोई एक बात आपसे मांग की, ये हमारी मांग नहीं है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कल युनवा जी इस गाँव में आएगा, आपके माई है तो पेड़ है, मैं जानता हूँ, मैं वो बड़े पेड़ के नीचे हम उतरेंगे और सार्वजनिक कुआ है उसका पानी पियेंगे। क्या उस पेड़ के नीचे उतरने के लिए आपके मनाही है, क्या उस पानी का पीने की मुझे आपके मनाही है? लोग उठोने लगे, आप मना करेंगे, हम तो आएंगे, हम तो आएंगे, तो क्या हमको रोकेंगे पानी पीने से, पेड़ के नीचे रहने से? फिर मैं वहाँ से सभा से उठकर घर के कहाँ चल कहाँ चल, मैं काकू को नमस्कार करने के लिए जा रहा। मैंने कहा काकू कौन थी जिसने महीना भर जब कभी मैं घूम कर आता रात को 10-12 बजे मैंने ताज़ा भोजन खिलाने मिलते, मैं उसका चरण वंदन करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसका चरण वंदन किया, कैसा है रो ऐसा ऐसा, मैं कोई गाँव वाले ऐसा कह तू चिंता कर, मैं अकेले हुई ऐसा करूँगा। मैं अभी मैं वापस आया, मैं उन लोगों से कोई बातचीत नहीं, मेरे से एक बूढ़े आदमी थे, मैं वहाँ से वापस लौट गया। कोई बात नहीं क्यों थी व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था में तो विश्वास था। मैं वहाँ चला आया अच्छी व्यवस्था में, इस तरह से पदार्थ में बातें होती रहें। अब यहाँ की बात वर्धन है, विनोबा है, अरे मैं नाम नहीं लूँगी कि उन्हें एक पुराने नेता को पत्र लिखा कि आपकी मेरी दोस्ती है, वो पुराने जमाने गांधी के ज़माने के आए थे, तो मैं आपके गांव में आऊँगा, मैं भूदान ग्राम ना कुछ नहीं मांगूँगा, तो उस आदमी ने जवाब आप कह दिया। जो आदमी ऐसा था कि जिसके बर्थडे पर गांव को भोजन मिलता था, ऐसी उसकी आर्थिक अवस्था थी, संतरी के बाग थी उसके, उसने कहा बिना आप मत आइए, आप बूढ़े हैं तो अपने साथ दो लोगों के साथ खिलाइए, बाकी लोगों को मैं खिला नहीं सकूँगा। संसद से आगे क्या करें, मैं तो टोली का इंतज़ाम करने वाला था। तो बंग साहब को मैंने कहा कि देखो मैं जाता हूँ और ऐलान करता हूँ कि ला आएगा और उस दिन नगद भोजन होगा, तो मैं उसके पूरे गांव को भोजन दूंगा। सामने करेंगे विधान नशे देनी चाहिए दंड था ये का। मैंने कहा कुछ गाँव में विनोबा जी के व्यवस्था था अच्छी, विनोबा जी गए थे, वो ब्राह्मणेतर पार्टी के नेता थे, गांधी जी का आश्रम भी यहाँ न हो यह उनकी तैयारी थी उन लोगों की, लेकिन जमनाल बजाज के कारण वो कुछ तो कर नहीं सके। ऐसा ही पहले ग्रुप था ब्राह्मणेतर लोगों का, ब्राह्मणों का देश करने वालों का। एक ही समय एक आदमी के पास मैं गया था, जयप्रकाश जी का यहाँ दौरा था, तो जाजू जी ने मैं किया उस वामनराव वसु के यहाँ जो जिला परिषद या जिला भूविकास बैंक के अध्यक्ष थे और यहाँ के नेता के नेताओं के नेता थे, तो मैं उनसे बात करने के लिए गया था कि कल जयप्रकाश जी यहाँ आएंगे आपसे बात करने के लिए। तो भला आदमी गांधी जी के जितने भी जाजू ने पूरे भारत में खादी भंडार खुलवाए हजारों, उनको गालियाँ देता था, गालियाँ, और कुमारप्पा जी उनको गालियाँ देता था, गालियाँ ही, और मनोहर जी दीवान क्या लेन देन है उनसे, उनको भी उन्हें पुलिस ही गालियाँ देता था। मैं बोलने को जिसका तो बोल ही नहीं देता था। फिर हमने कहा ये आदमी ऐसा है कि अच्छा, मैंने कहा गलत है झूठ है, मैंने उसके मुँह से शब्द निकले पहले ही मैंने भी अपना तोपखाना शुरू किया, गलत है झूठ है गलत है झूठ है, मैंने अपना मारा शुरू किया। मैंने कहा देखो अब कल जयप्रकाश जी आए थे क्या करें, बोले सुई के नोक पर मिलने इतने

जमीन मैं नहीं दूंगा बोले। मैंने कहा, मैंने कहा आपने महाभारत पढ़ा होगा, ऐसा किसने कहा था और उसका नतीजा क्या हुआ? निकाल दिया वो इसका घर के बाहर। मैंने कहा उसके क्वेश्चन मत, लेकिन मेरा शब्द ख्याल में रखो कि जिस दुर्योधन का मैंने सुख नहीं कर जमीन दे उसका असर क्या हुआ, आप सोचे जा रहे इस पर। और ईश्वर भी वरदान है विनोद जी के साथ। एक बार 1757 में प्लासी के लड़ाई में भारत के हार हुए अंग्रेजों के साथ, 1857 में भी हम सफल नहीं हुए, 1957 भूमि क्रांति करेंगे। फिर वो जिंदा ला लिया, अब क्या करें? अंग्रेजों के जेल में साल साल दो दो साल तक कार्य करता रहे, अब हम माने कि भूमि क्रांति, तो हम भगवान का जेल समझकर एक साल भर घर में नहीं जाएंगे, कोई घर में नहीं जाएगा, पूरे साल भर में विदर्भ में भूमि क्रांति को बल देने के लिए घूमेंगे। निर्णय हुआ और जिले जिले में प्रचार हुआ। हमारे संयोजक था तो भंडारा जिले में 50 लोग निकले जो घर में नहीं जाएंगे, नागपुर में वर्धा जिले में 50 लोग निकले। एक वानखे का किस्सा है, सभा हो रही थी, लोग निकल रहे थे, एक वहाँ के कार्यकर्ता ने साल भर से निकलने का वादा किया और टोली में आने लगा, तो पीछे से उसकी पत्नी आ गई, उसके लपेट गई उसके कमर में, वो आगे बढ़ा वो पीछे खींच रहे, कहाँ जा रहे बोले, नेरा में बिल्कुल का क्या इंतजाम है? तो इसे तमाशा गाँव वालों ने देखा कि 50 लोग वो अपने विचार आने की कोशिश कर पत्नी पीछे खींच रही है। तो मैंने उसको समझा, देखो या आना हो तो अच्छा, ना आना तो इतना तो कर सकते हो कि तुम जहाँ जाओगे वहाँ केवल भूदान की बात करना, शादी में जाओ कहीं नहीं जाओ, मत हो गया तुम्हारा एक साल का। तो इस तरह से वर्धा जिले में 57 लोग निकले, यवतमाल जिले में निकले, अकोला जिले में निकले, नहीं करीब करीब 250 लोग निकले पूरे विदर्भ में। तो उस समय में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, मैंने पूरे घूमते घूमते सभा करना, और मेरा तो निर्णय था पहले से कि सभा में जब तक भूदान नहीं मिलता तब तक मेरी सभा खत्म नहीं होती थी। कंधे पे कंबल रहता था, एक बार झोड़ा रहता था, अरे बंग साहब बोले तू कैसा है बोले, मैंने कहा मैं या मरना बेहतर समझता, बिछाने पर मुझे आराम नहीं मिलता था। तब तो मैंने अपने कार्यकर्ता देखो इसी को कंबल अपने ले लो, सैला ले लो, मैं करास करने लगा नदी, तो मेरे जीती उन्होंने उठाए, इसलिए उन्होंने मेरी पूरी यानी हिफाजत की कि जरा भी तकलीफ न हो। तो इस तरह से भारत में जो कहीं न हुआ वो सब इस विदर्भ में हुआ, क्यों इन सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल था। एक बार विनोद जी ने ऐलान किया कि देखो जी भारत में एक दिन में होली होती है, एक दिन में दिवाली होती है, ऐसे भूदान में मिली जमीन एक दिन में क्यों न बांटी जाए। हमने वो नारा उठा लिया, उन्हें भूदान समिति मीटिंग बुलवाई सबकी, उसने संत टुकड़े जी महाराज आए थे, प्रमुख कार्यकर्ता आए थे। मैंने इच्छा रखे कि हमको ये संकल्प करना है कि एक दिन में जितने भूदान जमीन नहीं दी इधर में एक दिन में बांटनी चाहिए सबको। आश्चर्य के कैसा तो मैंने कहा ये संभव है, हो सकता है, मैंने कहा कि आप जुम्मा लेते, मैंने हाँ मैं भी जुम्मा लेता हूँ, आप पूरी शक्ति मुझे दीजिए आपकी। तो मैंने लिस्ट तैयार की किस गांव में कितनी ज़मीन बांटनी है, तो कम से कम एक आदमी को 5 एकड़ चाहिए, तो 5 एकड़ के ऊपर जितने ज़मीन बटनी जिस गांव में है उन सब गांव में हम बंटवारा करेंगे। और फिर कार्यकर्ताओं के जिम्मे काम बांट दिया कि कौन से गाँव में कितनी ज़मीन बटनी है, और बंटवारे का ट्रेनिंग देने के लिए 40 जगह मैंने शिविर लिए। एक्चुअल जमीन का बंटवारा कैसा करते हैं, जमीन का बंटवारा करने का तरीका यह है, गांव की आम सभा बुलाना और आम सभा कौन भूमि है उनके नाम मंगवाना, फिर कितनी जमीन बंटने की है वो जमीन का 3 लोगों को जमीन बांटनी है, 5 नाम आगा, अब क्या करें, कार्यकर्ता जमीन नहीं बांटे, वो 5 लोग एक जगह बैठेंगे और उस लोग अपना विड्रा करेगा, मेरे पास जमीन तो मैं विड्रा था हूँ, लेंगे 4, अब क्या करें, अब गोटियाँ डालेंगे 4, जो 3 दिन के नाम लेंगे उसको जमीन मिलेंगे, अब कोई पक्षपात नहीं, पैसा नहीं, पूरे विदर्भ में इसने ट्रेनिंग शिविर लिया, उनको उन गांव का जिम्मा दे दिया। साल भर में एक दिन 2 अक्टूबर का दिन तय था गांधी जयंती का, तो 1100 गाँव में जमीन बटी एक दिन में, हमने निश्चित ही की जन आंदोलन

0: कार्यकर्ता जमीन नहीं बांटे, अब जनता जमीन बांटेगी, अब हमारा अपने कैसे हुआ। जैसे जैसे विनोद ने जो जो भी जिम्मे दिया वो करके बताया।
1: लास्ट में जैसे कि विनोबा की जैसे समाधि की ओर जब विनोबा चले तो उस समय क्या परिस्थिति थी?
0: वो कई सालों से हमारे मन की तैयारी कर रहे थे और नागदेव ने समाधि ली। जब मैं मरूंगा तो क्या तुम हंसते हंसते मुझे विदाई करोगे कि नहीं? आप मेरी विदाई करोगे? वो बार बार कर रहे दो तीन साल पहले। इसका उनके मन में चल रहा था कि हम, और बाद में वो कहते मेरा कर्तव्य संपल, माझे कर्तव्य संपले, कहने कहने का मुझे करना था किया और समाप्तम कहने का मतलब था उनका। और उस मानसिक अवस्था में थे,
1: देह त्याग दिया विनोबा ने, तो उस समय आपको कैसा लगा या क्या फीलिंग थी और आश्रम के जो निवासी है उनकी कि अब तो विनोबा जी चले गए आश्रम का कैसे होगा, या ऐसे कुछ प्रश्न उभर कर आए?
0: ऐसा है कि विनोद जी ने जब ब्रह्म विद्या मंदिर शुरू किया तो उसके बाद 12 साल के बाद आए थे, उनके पीछे 12 साल तक वह आश्रम चलता रहा।
1: जैसे मैंने पहले भी कहा था कि विनोबा की समाधि के समय आश्रम की स्थिति क्या थी,
0: तो विनोद जी के आखिरी दिन थे जो मैं लगा था, जो बीमार थे और उनका अंश शुरू हो गया था। बंग साहब ने मुझे संदेशा भेजा खेती पर, अरे आओ ना विनोद जी की आखिरी घटना यह अवस्था है। तो मैंने अपने खेत को छोड़कर, मेरा संकल्प पूर्ति हो गई थी, 3 साल भी होते आए थे, मैं वहाँ गया और देखा विनोद जी का आखिरी साथ चल रहा। मुझे बहुत दुख हुआ लेकिन विनोद जी ने तो मना ही कि रोटा चेला। तो मुझे तो बाद में मैंने अपने एक इसमें लिखा है, पत्र लिखा बाद में कि अनेश है वैचारिक अधिष्ठान प्राप्त, मैं बहुत रोता हूँ आगे नहीं है, ये मैंने जो कृतज्ञ हमें जो भोजन है कि मैं इसके लौटता हूँ, ऐसा मैं उनको पत्र लिखा। वही पत्र मैंने गांधी जी को भी लिखा, मैंने आपके काम आपके लिए मैं अपने को, नहीं तो आप देखते कि आप मुझे, मैं गढ़चिरौली में हड़गांव में जाते निकालने का मैं था लेकिन मैं चल नहीं सकता, बोल खबर भोजन के भी मैं जल, लेकिन क्या करें मैं खामोश हूँ, लिखता भी नहीं, वो किताबें लिखी है क्योंकि मेरा निर्णय मेरा यह था, संकल्प था वो जो मैं वही लिखूँगा जो मैंने किया है। मेरे लिखने में एक शक्ति थी, उसके एक फॉलोइंग थी उसके, आवाज में कुछ निकल नहीं पाता इसलिए लिखता भी नहीं। किताब लिखी है अभी किसान गीता, पहले मैंने सोचा था कि मैं किसान 21वीं सदी का किसान वेद लिखूँ, मेरी तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, विदर्भ मेरा कार्यक्षेत्र है और यह आत्महत्या हो रही है, और किसान को वेद सिखाने की जरूरत, किसान को गीता सिखाने की जरूरत है, जैसे कृष्ण ने 5 पांडवों को लड़ाई के लिए खड़ा किया, किसानों को किसान के बेटों को लड़ाई के लिए खड़ा करना है, इसके लिए किसान गीता किताब मैंने लिखी थी, लिखी है और प्रकाश होनी है, उसका रिश्ता मैं नहीं करूँगा। पवनार में कभी जाता हूँ, कभी सेवाग्राम जाता हूँ तो मन रोता है, वहाँ का वैभव मैंने देखा है पहले का और अब आज की स्थिति में देखता हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। मैं तो वहाँ तो यकीनन कहता हूँ, मैंने एक सभा जब ठीक था कहा था मैंने एक बैठक में, यदि मैं चंगा होता तो शंकर का तांडव नृत्य क्या है ये विदर्भ में देखा होता, एक दिन चौपाई या वाहन इस सड़क से गुजर नहीं सकता था, ये किसान आत्महत्या कर रहा है, पूरा किसान रास्ते पर खड़ा होता, लेकिन अब क्या करें, मेरा संगठन है, मेरे भंडारा के साथी की मृत्यु हो गई है, नागपुर के साथी की मृत्यु हो गई है, यवतमाल के साथी की मृत्यु हो गई है, अकोला के साथी की मृत्यु हो गई, आके करेंगे किसके बता। एक दिन बंग साहब मुझे यहाँ मिलने के लिए आए, पुनः पेटू या आयुष्याचा मशाले, अरे फिर से अपन खड़ा करेंगे, वो हमेशा रहते उनका मारा रिश्ता ऐसा था कि जहाँ मैं हूँ वहाँ बंग साहब और जहाँ बंग साहब वहाँ मैं हूँ, हम दोनों को भूटान के क्षेत्र के रामलक्ष्मण कहा कहा कर आप चल नहीं सकते। जिले के हमारे जो साथी थे आर्मी के बाबा राजा हेंगे रहे थे, सरजाड़ा बैठे थे भी नहीं, मेरी हालत है लेकिन किसके बल पर लड़ेंगे, वे गुजर गए, मैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते इस आदमी में ताकत थी कि वो पूरे विदर्भ को खड़ा कर रहा।
1: जी, हमें भी आपके साक्षात्कार से बहुत सारी प्रेरणा मिली है और हमारे जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, उनको भी यह साक्षात्कार निश्चित ही मार्गदर्शन

0: शिक्षक रहेगा कि उस समय की परिस्थितियाँ और उनसे आपने जो जो दो दो हाथ किए उस समय की सारी बातें, सारा घटनाक्रम इस साक्षात्कार के माध्यम से, रेडियो एमगिरी के माध्यम से हमारे वर्धा, हमारे पूरे भारत के सामुदायिक रेडियो से लोगों तक पहुँचेगा, यही एक संदेश है। दूसरा, आपकी दीर्घायुष्य के लिए हम हमारी रेडियो एमगिरी और हमारे महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान की ओर से शुभकामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको दीर्घायुष्य मिले और इसी तरह आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे। आपने साक्षात्कार दिया इसलिए रेडियो एमगिरी की ओर से मैं आपका धन्यभागी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओ, अभी आपने आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस धारावाहिक में आचार्य विनोबा भावे के करीबी श्री वसंत नानाजी बोंबटकर इनके साक्षात्कार की द्वितीय कड़ी सुनी। यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।